ष्टेयाता तवा चौता सौवाने हकेवेन ष्टेयाता न एता सौवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेका